0: It's 10 o'clock. Hourly time check is dropped. 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jaan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4.
1: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

कल में ढाला जाता है। इसी तरह कान पुन धात को और चमड़ा सांस खाल को बनाता है। इसी तरह अगर ये तुम्हारी तलवार आग में ना डाली जाए

0: मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांग की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4

जनाब, तो अगर आप भी, आपकी आंख भी जनाब खुल चुकी है केसन के प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि केसन के प्रोडक्ट जनाब आप लोगों को डेढ़ जरा फायदा पहुंचाते हैं, और डेफिनेटली जब आप यूज करते हैं जनाब आपको वही रिजल्ट मिलते हैं जो आपने सोचे हुए होते हैं कि भाई मैं फलां चीज इस्तेमाल करूं तो मेरी स्किन ऐसे हो जाए, मेरे बाल ऐसे हो जाए, तो बिल्कुल बिल्कुल जनाब आपको डिजायर रिजल्ट जो होते हैं जनाब डिजायर रिजल्ट मिलेंगे जब आप केसन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर बालों का मसला है तो केसन का ऑयल और शैम्पू एक साथ इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि जनाब जोड़ी हमेशा दो से मिलके बनती है, और अगर हीर ना होती तो रांझे की कहानी कैसे बनती, सस्ती ना होती तो जनाब सस्ती ना होती तो पुन्नों की कहानी कैसे, दास्तान कैसे मुकम्मल होती। ठीक है जनाब, कहानी मुकम्मल करने की जनाब दो किरदार की जरूरत होती है, और हम इसलिए कहते हैं कि जनाब अपने बालों की दास्तान को पूरा कीजिए, अपने बालों की नामुकम्मल दास्तान को, वो आपके बाल जो प्यारे नहीं लगते हैं, आपके बाल जिनको देख कर लोग खुश नहीं होते हैं या तारीफ नहीं करते हैं, तो जनाब आपके बालों को एक मुकम्मल जोड़ी की जरूरत है जिसको हम कहते हैं केसन हेयर केयर जोड़ी, यानी कि केसन ऑयल और केसन शैम्पू एक साथ। तो जनाब अपने बालों के मसाइल का शिकार है तो केसन की हेयर केयर जोड़ी ऑयल और शैम्पू का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपकी स्किन के ऊपर जनाब डलने से है, आप हर वक्त बीमार से लगते हैं, तो जनाब केसन के रिफ्रेशिंग फेस वॉशेस का इंतखाब कीजिएगा, जैसे कि केसन का प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश, जैसे कि गो पिंपल फेस वॉश, जैसे कि चारकोल फेस वॉश, और जैसे कि केसन का ग्लूटा व्हाइट फेस वॉश। जनाब और क्रीमों की जब हम बात करते हैं, वैसे आज के प्रोग्राम मैंने जो सेट किया था वो ये किया था, ये इस वजह से किया था कि आपको आज हम क्रीम्स के बारे में बताएंगे, लेकिन बातें और भी बहुत सारी बीच में निकल के आ जाती हैं। एनियो केसन नेचुरल पाकिस्तान के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार किस्म की ब्यूटी क्रीम्स हैं जनाब, और ये चार क्रीमें कौन खरीदेगा जी जनाब, जिसको अपने चर्चों का शौक है और जो ये चाहता है कि जनाब उसकी गैर मौजूदगी में भी लोग उसका जिक्र करें कि भाई पाँव है तो इसके हैं, चेहरा तो हर किसी का प्यारा होता है, चेहरे की देखभाल तो हर कोई करता है, लेकिन बंदा तो वो है जो अपने पाँव की भी देखभाल करे, और ये नहीं कि पाँव को जुराबों के अंदर छुपा दे, पाँव को जूते के अंदर छुपा दे और सिर्फ अपने चेहरे के ऊपर मेहनत करे, नहीं भाई, ये खूबसूरती इनकम्प्लीट होती है, ना मुकम्मल होती है जनाब। केसन सर से लेकर पाँव तक आपकी खूबसूरतियों का ख्याल करती है। दैट्स व्हाई जनाब हमने एक बहुत बड़ी रेंज बनाई है आप लोगों के लिए, और इन प्रोडक्ट्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी खूबसूरती की दास्तां

जी जना बिल्कुल सही सुना आपने, चार किस्म की क्रीमें हैं। नंबर वन हमारी केसन जाफरानी नाइट क्रीम, नंबर टू केसन की ग्लूटा व्हाइट स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, तीसरी हमारी हैंड एंड फुट व्हाइटनिंग क्रीम। हाथ और पाओं को बिल्कुल जनाब हम कहते हैं कि हमारी क्रीम फेस से ज्यादा जल्दी आपके हाथ पाओं को गोरा कर देती है, क्योंकि केसन की हैंड एंड फुट व्हाइटनिंग क्रीम जो है उसका फार्मूला बहुत ही खास फार्मूला है, क्योंकि स्किन की निस्बत चेहरे की निस्बत आपके हाथ पाओं की जो जिल्द होती है वो इतनी सेंसिटिव नहीं होती है। हमने फास्ट एक्टिंग फार्मूला बनाया है और जस्ट इन अ फाइव नाइट्स, आप पांच रातें जब अपने हाथ और पाओ के ऊपर केसन हैंड एंड फुट व्हाइटनिंग क्रीम का लेप लगाते हैं तो जनाब अपने चेहरे से ज्यादा आप अपने हाथ और पाओ को गोरा होता हुआ

0: जी जनाब, ये हमारा नंबर है। इसके अलावा दूसरा हमारा नंबर जो कि जोंग का नंबर है, और ये भी हमने आपको अलाउ किया हुआ है, और इसके ऊपर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारा जो जोंग का नंबर है वो है 0313, जी जनाब 0313-798-4545। इस नंबर पर आप हमसे रब्ते कर सकते हैं और हमसे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और उनको हम मौका दे रहे हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, मैं मुरीद बात कर रहा हूँ डेरा इस्माइल खान से।
0: जी मुरीद भाई, कहाँ से? डेरा इस्माइल खान
1: बोलो। मेरा बेटा है बेजान, इसका माजूर, इसके लिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए?
0: जी अगर उन्हें आसाबी कमजोरी है, टांगों में कमजोरी है, चलने फिरने में मसला है उनको,
1: या चल फिर नहीं सकता।
0: अच्छा, तो उसके लिए हमारा ऑयल है केसन का शुतुरमुर्ग का तेल है, जिसे हम कहते हैं शिफाए दर्द ऑयल। ठीक है जी, शिफाए दर्द ऑयल है ये। आप बाजार में चुगला के साथ मशहूर दवा खाना है वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर केसन शॉप के ऊपर आ जाएं, ये कमर्शियल मार्केट के बिल्कुल पीछे है, तो वहां पर आपको जो है बहुत रियायत के साथ प्रोडक्ट मिल जाती है। और ये प्रोडक्ट तो खसूसी हम लोगों के साथ तावन करते हैं कि कम कीमत में कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सकता है उनको हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भाई जान? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुरीद अब्बास हमारे साथ ग्लोबल एफएम 91 को सुन रहे हैं जनाब। और जी बिल्कुल, ये जो मसला है आसाबी कमजोरी का, जैसे कि फालिज का लकवा हो, फालिज ज़दा बंदे जिसका कोई जिस्म का कोई हिस्सा जो है मुतासिर हो गया हो, तो उसके ऊपर ये ऑयल बहुत जबरदस्त काम करता है। क्यों काम करता है कि ये जो ऑयल है जनाब, क्या कहते हैं इसको, शुतुरमुर्ग का तेल, इसके अंदर जो सबसे बड़ी ब्यूटी है जनाब, जो खूबी है इसकी, वो ये है कि ये पट्टों के अंदर जान डालता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं और उनको मौका दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: जी हमारे साथ मेरे ख्याल में आवाज तो जानी पहचानी है, अपना नाम बताएंगी?
2: सुहाना
0: आपी बात कर रही है। सुहाना आपी, हमारी दो आपियां तो हमारे शो में माशाल्लाह इकट्ठी हो चुकी हैं, यानी कि एक सोनिया आपी और एक सुहाना आपी। दूसरी और दो आपियों के नाम आते हैं आपको याद है? सुहाना आपी,
2: गजाल आपी,
0: ठीक है, और दूसरी नादिया आपी।
2: नादिया,
0: अच्छा नादिया आपी पता नहीं किधर गुम हो गए, हमें समझ नहीं। ईद से पहले जो है हमारे पास आई थी माशाल्लाह, ढेर सारी केसन की जो है शॉपिंग करके लेके गई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो बिल्कुल गायब हैं। तो आपके रास्ते में है तो उन्हें कहें कि भाई के शो में आ जाएं भाई।
2: वो मेरे रास्ते में नहीं है और मैं डेली आपको शो सुनती हूँ, बस मौका नहीं मिलता।
0: अच्छा डेली शो सुन रहे होते हैं, तो मैं आप जो रोजाना शो सुन रही होती हैं, तो जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको लग रहा होता है कहीं कोई झूठ तो नहीं बोला जा रहा होता?
2: 100% एकदम सच, प्योर,
0: एकदम सच्ची बातें होती हैं, कोई झूठ नहीं बोला जा रहा होता केसन के शो के अंदर?
2: नहीं, मैंने भी अल्लाह को दम देना है।
0: आपने भी अल्लाह को जान देनी है। अच्छा आप उस दो दिन पहले भी आई होती हैं सोना आपी हमारे शॉप के ऊपर, और आपकी कहानी 3 साल पहली कहानी कि आप आज भी केसन का मिल्की सोप लेके जा रही थी, व्हाई दिस कोलावेरी?
2: मिल्की सोप तो मैंने इतने सेल किए ना, इतने गिनती से बाहर है, जो मुझे देखता है ना कि अपना राज बताए, मैं कहती मिल्की सोप, वो आ तो हाथ 2-3 सोप हमें दे दे।
0: अच्छा जी, आप हमारी चलती फिरती मशहूरी हैं, आप हमारी चलती फिरती मशहूरी हैं मतलब है।
2: जी बिल्कुल
0: हाँ जी माशाल्लाह, तो वही मैं कह रहा था कि हमारी ये जो सुहाना आपी है मिल्की सोप की जान नहीं, कब छोड़ेंगी मिल्की सोप की जान वैसे ये बताए?
2: जब तक जान में जाने कोई नहीं छोड़ता।
0: तो आपके घर में तो मेरे ख्याल में ये

0: हाँ वो ये कहते हैं कि आप
1: अक्सर ऐसा होता है, मैं इतनी बीमार पड़ी होती हूँ, बेटी नहीं जाती, मैंने कहा मुंह धोना है, अम्मी किधर, लगता ही नहीं है आपने तो मुंह धोया हुआ है।
0: तो माशाल्लाह आप हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं। लेकिन ये आज हम चार किस्म की क्रीमें हमने बताई है ना सुहाना आपी, एक ग्लूटा क्रीम, एक बल्कि हाँ अब तो माशाल्लाह पिछले 3-4 माह से ग्लूटा लेके जा रही है, क्या कहानी है ग्लूटा वाइट की?
1: जी, जबरदस्त रिजल्ट,
0: जबरदस्त रिजल्ट। क्या कहना चाहेंगी टाक वाले बहन भाइयों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह को जान देनी है, क्या पैगाम है आपका?
1: ग्लूटा वाइट क्रीम से सारी छाइयां खत्म हो गई हैं।
0: खत्म हो गई है, तो यही पैगाम है टांग वालों के लिए।
1: जिंदगी में नहीं आए थे, पहली बार तब आए और उससे खत्म हो गए।
0: ओके, पहले खत्म नहीं हो रही थी लेकिन जैसे आपने ग्लूटा वाइट क्रीम लगाई तो छाइयां हैं जी खत्म हो गई।
1: जी,
0: बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच जी। हमारे साथ सुहाना आप ही मौजूद है, कहती है रोजाना सुन रही होती हूँ लेकिन जो है प्रोग्राम का हिस्सा जो है कम कम बन पाती हूँ, लेकिन ये वो हमारे यूजर हैं कि जो शो में आए ना आए लेकिन ये केसन शाह के ऊपर हर हफ्ते जरूर आती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, थोड़ी सी जगह चेंज करेंगे ताकि आपकी बातें हम तवज्जो से सुन सकें। हेलो, जी जी बोले। अच्छा जी, जगह चेंज कीजिएगा, अपनी जगह चेंज कर लें ताकि 3 स्टेशन हमारे साथ एक साथ हैं, एक जिला भी नहीं है, टांग भी है, डेरा भी है, पहाड़पुर भी है, और आपकी आवाज हम तक बिल्कुल जी सही आनी चाहिए। मेरे चाय का कप बिल्कुल मेरे सामने आ चुका है लेकिन अभी ये गर्म है, थोड़ा इसको ठंडा होने दें, ठीक है जनाब, ताकि ठंडी चाय का जो मजा होता है ना वो कुछ और ही होता है। जनाब एक और कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, जनाब इनको मौका दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेहरबान भाई हमारे साथ हैं लेकिन इनकी भी आवाज का मसला है, तो भी जगह चेंज करके थोड़ा सा, अगर आपको टेलीनार के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है वहां पर अगर आपका नंबर नहीं लग रहा तो हमारा दूसरा नंबर जो जोंक है उसके ऊपर कॉल कीजिएगा और वो है 0313-798-4554। एक और कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। ओए होए होए, सुपर द बिस्ट करते सारे कोल, कौन ही सारे कोल से जरा सिर्फ चाह द प्याला है आज पता होवे तो। हाँ बिल्कुल, तुसा तुसा सारी शॉप ते आंदे रहने लेकिन सुहाना आप ही ना तुम्हारी मुलाकात नहीं थी, सारी दुआ है कि जेनर तुसा उस दिन मुलाकात थी, मैं वैसे ही काफी ना मुलाकात तुम्हारी थी आई थी। बिल्कुल जनाब, ना सिर्फ देखने च मजेदार है, ना सिर्फ सुंघने च जबरदस्त है, बल्कि रिजल्ट ही मिल्की सोप दे जबरदस्त है। कूड क्यों मारे, अल्लाह को मुंह नहीं दिखावना है जी, कूड़ मरे सुन अल्लाह को के मुंह मान के दिखे सुन। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, आज नेटवर्क का इशू है और आप लोगों की आवाज बिल्कुल भी थोड़ी सी बहुत, मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि हमारी चार क्रीमें आज, वैसे हमारा जो टॉपिक है वो चार क्रीमों का है और कौन से लोग आपको ना पसंद है तो वो भी आपने बताना है, और मैं पहले 2 लोगों से पता करना भूल गया, सोना आप ही से भी और एक और भाई भी थे, तो जोंग के ऊपर कॉल कीजिएगा, हो सकता है वहां पर आपकी आवाज सही हम तक पहुंच सके। जी जी जनाब, और हमारे साथ इस वक्त जो है मेहरबान आ चुके हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, मैं क्या आज तुसा कितना फंसे वदे वे, बिल्कुल तुम्हारी आवाज सारे तक सही नहीं आती पई, जहा चेंज करो सही, अपनी जगह चेंज करो ते बस को कॉल करो, आज शायद नेटवर्क का इशू है, तो सारा दूजे नंबर 0313-798-4554 सही, इन्दे दी तुसा सब को कॉल कर सकते वे, ते 0344-936-3366 वाले नंबर ते भी तुसा सब को कॉल कर सकते वे। चार किस्म दी क्रीमा हिन जनाब, केसन दे मुंह ते लावण वास्ते हैं, चेहरे को चमकावण वास्ते हैं, एक ग्लूटा वाइट जैसा कि सुहाना आप ही हुने इरशाद फरमाते पैन के कह क्रीम नाल मेरी छाइयां खत्म नहीं थे लेकिन ग्लूटा क्रीम नाल खत्म थी गए हैं, तो यो गाल सा को एक दफा

0: जी मास्टर फतेहुल्ला साहब कह रहे थे कि आप जो है प्रोग्राम कहाँ से कर रहे हैं। सो भाई मैं प्रोग्राम जो है कहाँ से कर रहा हूँ, मैं आज आपको बता दूं कि मैं प्रोग्राम इस वक्त कहाँ से कर रहा हूँ। तो भाई आप भी अगर इसी वक्त ऑनलाइन जो है गूगल के ऊपर जाएंगे और वहां पर जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे लिखेंगे जनाब जी, जो क्या लिखेंगे वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये सुनिए।
1: सुनो, One of our 10 pro tips for working with cursor agents.

0: जी जनाब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। ये प्रोग्राम केसन 321 FM से आप सुन रहे हैं और इस वक्त ऑनलाइन अगर आप लिखेंगे kesan.radiostream321.com इस वेबसाइट पर जाएंगे तो हमारा ये प्रोग्राम आप वहां पर सुन पाएंगे और उसी वेबसाइट से ये तीनों स्टेशन हमारा प्रोग्राम उठाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम। कितना सही आवाज, बिल्कुल सही वेंदी पई
1: है।
0: पहाड़ पूरे एफएम ते या 91 ते?
1: पहाड़पुर
0: लाओ जाना सही। पहाड़पुर अगर मजा नहीं करना पिया था। अच्छा 91 लाओ जबा आवाज सही आसी बिल्कुल। तो अल्लाह दी शुक्र है, अल्लाह दी शुक्र। तुसा सुनाओ, तुसा ठीक ठाक वे? आमीन आमीन सुम आमीन। कोई सलाम
1: है? ठीक
0: है जी, सारे तुहाडे दोस्तां को सलाम। ओके जी, बहुत शुक्रिया। चाचा फतेह खान साडे नाल मौजूद हैं। तुस जनाब केसन 321 FM।

0: जनाब केसन 321 एफएम से आप लोग सुन रहे हैं लिंक के थ्रू, आपके इलाके का एफएम हमसे लिंक है और आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर डायरेक्ट भी जाके सुन सकते हैं kesan.radiostream321.com। डियर सर ठीक है जनाब, आपके मैसेजेस की तरफ मैं जा रहा हूँ लेकिन फिर आप लोगों की कॉल आ जाती है। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या रखनी भाई
0: जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन है हमारे साथ मोहतरम, नाम बताइएगा।
1: ये मेरा नाम एहसान है, मैं तहसील प्लाचू वाले रहती हूँ
0: जी। 88 को सुनने बैठे हुए हैं सही? अच्छा जी, देखो यकीन करो जेरे इलाके का बंदा कॉल करेंदे ना सा कुछ समझ आवेंदी है, डेरे को ले ए पहाड़पुर को ले या वात ए टांग को ले, अपने इलाके दी अपनी अपनी लहजा है ना सही?
1: गालियां
0: चंगे लगदे न तुहाकू, दिल ते लगदे न कि दिमाग ते लगदे न?
1: यार कई दिल दिमाग गाली ते लगदे वे प्यार
0: सा। अच्छा थोड़ा मुअसर थींदा भी है?
1: जी जी
0: चलो अच्छी गल है, पूरा असर थी वैसे। एक महीना
1: पिया सुनो, खामोश लिसनर करे।
0: अच्छा खामोश लिसनर वे,
1: जी जी
0: खामोश लिसनर तो सारा एसिड होने नहीं, यकीन करो पता है तो कुम मैं ता बहुत पहले साथ ऐसे जेरे एक्टिव लिसनर इन्ना ये ही सारा कूल एहसास आई ना सही समझें दे ऐसे पहले, लेकिन बाद ही सबको पता लगे कि भाई उन्दे को वड़ा एहसास है तो सारे खामोश लिसनर होने। खामोश लिसनर यकीन करो बहुत ज्यादा सारे प्रोडक्ट गिन के सुन के गिन दे पे होने बहुत जल्दी, ठीक है? नो डाउट सारे प्रोग्राम दी रौनक ए लोग होंदे जेरे कॉलर करेंदे न कॉलां करेंदे न ते प्रोग्राम दा हिस्सा बणदे न, लेकिन खामोश लिसनर ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत मेहरबानी सही थे, के हुक्म है तुहाडा, क्या कहना चाहंदे
1: हो भाई? हुक्म मेरा ए है जो मेरे इक छोटी तेरी दाद बहुत ज्यादा रांदा है, दर्द रांदा है।
0: कितना दर्द रांदा है?
1: ते छोटी तेरी बहुत ज्यादा दर्द है, दर्द रांदा है ना।
0: अच्छा ठीक है, अगर नींद का मसला है तो सारा हेयर ऑयल रात एक 5 मिनट मालिश करो ना, तो यकीन करो इतनी मिट्टी नींद आंदी के लोग आते फजे दी नहीं, बंदा नमाज से भी नहीं उठ सकता, इतनी मिट्टी नींद आंदी है तेल, ठीक है सर? क्योंकि इन्हें भी छे तिलां का तेल, जैतून का तेल, अच्छा। ते रोज मैरी का तेल, ये त्रै ऐसे चीजें जो उका ते बंदे को पुरसकून कर देने, ठीक है सही? ता ए हिक तो तुसा तेल गिन गनो, क्योंकि तुसा मालिश करे सो तोरे वाल ही चंगे थीसे ते नाल नींदर वाला मसला हलती सी। दूजा जरा तुसा चेली दर्द आदे पेवे ते शिफाए दर्द भाई, वो बस तुसा दू दफा लाओ ते इंशाल्लाह उंदे बाद देखो मास्टर फतेहुल्ला त्रीजी दफा 700 रुपए दा हिक तेल है सही, कोई हिक दफा गिनया ना, दूजी दफा त्रीजी दफा इंशाल्लाह गिन सना। चलो ठीक है, एक दुकानदार का एड्रेस या नंबर देना है जैसे रबता करके कुलाची दे प्रोडक्ट जरूर भेजू, क्योंकि टांग के सारे लोग कुलाची एफएम टांग एफएम को सुन रहे मेरे कुलाची कुलाची वाले, तो तुहाडे वाले कर बहुत सारे लोगों को सारे प्रोडक्ट चाहिए उसने, ठीक है सही?
1: यार सभी यार दुकान सभी तक कोई सही नंबर सही है दुकान दा बात।
0: हां नंबर दे सो ताकि अस उन्होंने रابطہ करू तुम्हारे इलाके जैसा अपने प्रोडक्ट भेजू, ठीक है सही? ते दूसरा जरा तुसा कह सगेरा तू सादे पेवे ना कि दिमाग ते बोझ रांदा है, हाजमा कंट्रोल सिर्फ सारा इस्तेमाल करो, बाजुकात मैदे की खराबी इंटरलिंक, ठीक है? ते वो जनाब गैस तुम्हारे दिमाग तो पहुंच दिए ते बोझ रांदा है हर वेले, तो हाजमा कंट्रोल सिर्फ इस्तेमाल करो सारा, ठीक है सही?
1: अच्छा एलर्जी
0: बस उन्दे वास्ते सारा एको साबण तुसा इस्तेमाल करो, डू साबण है गो पिंपल भी है ते मिल्की सोप भी है, ठीक है? लेकिन उन्दे को बेहतर है कि सारा जरा गो पिंपल है ना, गो पिंपल सावे रंग दा साबण है, सावे रंग दा,
1: ठीक है?
0: ओ एलर्जी वास्ते खारिश वास्ते बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है जनाब? उको तुसा नीम नीम दा बनाओ, बेसिकली नीम जे रोंदा ना एलर्जी खारिश ना सारे चीज खत्म करे, नीम टी ट्री ते बहुत सारे चीज होंदी मौजूद इन पे, तो ओ छोटा साबण 200 रुपए तक मिलसी, वो इस्तेमाल करे इंशाल्लाह तुम्हारे घर ते सारे मसले केसन नाल खत्म दिसन से।
1: अच्छा
0: ٹھیک ہے سر، بھائی بہت مہربانی، شکریہ جناب. اور آپ لوگوں کی کالز میں نے بہت زیادہ لے لی ہیں جناب، اور کالز کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا بالکل بھی. اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کی محبت ہے یہ، اور آپ اتنی محبت دیتے ہیں، نہ صرف آپ پروگرام سنتے ہیں بلکہ پروگرام کا حصہ بھی بنتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے ہمارے لیے، آر جی کے لیے، پریزنٹر کے لیے، کہ نہ صرف آپ پروگرام سن رہے ہوتے ہیں بلکہ ہمارے پروگرام کا بہتر طریقے سے حصہ بن رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم ڈیئر ریسپیکٹڈ خلیل تابش جوان صاحب، کالز ابھی بند کر دیں، مجھے پانچ منٹ میسج کرنے دیں. اسپیشل سلام ٹو شبیر اشبرا اساد اینڈ راجہ مسکین، آپ کا شو، کمپنی، انداز، گفتگو اور آواز، ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے آج تو بند کے رکھ دیتا ویسے بہت زبردست ہے. ماشاء اللہ خدا آپ کو اور آپ کی کمپنی کو جو ہے کامیابیاں عطا فرمائے. یور اون برو نظر حسن فرام کچی کاٹ گڑھ. جی سر، بہت شکریہ آپ کی ڈھیر ساری محبتوں کا، آپ کی دعائیں ہی

जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। ठाक से हूँ अब्दुल्ला खलील सर। मैंने वेट कम पेट कम यूज किया है, बहुत फायदा मिला है। जी जनाब, ये टांग से हमारी पहली शहादत है वेट कम पेट कम के हवाले से। वैसे तो डिफरेंट प्रोडक्ट की शहादतें मिल रही है ना जनाब, कि लोग फीडबैक बताते हैं। ये फीडबैक नहीं, मैं इसको शहादत बोलता हूँ, ठीक है जनाब। और ये है हमारे साथ अब्दुल्ला, इनका नाम है जनाब टांग से, और कहते हैं कि मैंने वेट कम पेट कम यूज की है और बहुत ही ज्यादा फायदा मुझे हुआ है। तो भाई वो तमाम लोग जो जिनका वजन ज्यादा है, कुदरती तरीके से हम 10 लाख रुपए जुर्माना देंगे अगर कोई बता दे कि इस प्रोडक्ट के अंदर, इस फक्की के अंदर कोई स्टीराइड है, कोई केमिकल है जो चर्बी को पिघला रहा है। 10 लाख रुपए। डेयर असमल खान सुनने वालों, ट्रांक में पहाड़पुर हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेचुरल चीज इतने जल्दी कैसे चर्बी पिघला सकती है। तो ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्द वाहिद को, किसी भी इदारे को जो हमारे इस प्रोडक्ट को चेक करना चाहे। खालिस इंडियन जड़ी बूटियों से बने हुआ हमारा ये फॉर्मूला है। एक पाकिस्तानी जड़ी बूटियां होते हैं, नो डाउट पाकिस्तान की चीजें प्रमोट करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजों का मैार कुछ और होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, उनका असर, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो हम इंडियन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते हैं जनाब अपनी इस वेट कम पेट कम फक्की के अंदर। और ये आपके टांग की पहली शहादत है जो हमें टांग से मौसूल हुई है कि भाई आपके वेट कम पेट कम ने बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, ये हम ऐसा करते नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए ये नंबर बता रहा हूँ कि अगर कुछ लोग जो यूज करना चाहते हैं वेट कम पेट कम को, और वो ये समझते हैं कि हम इनसे पहले बात कर लें कि इन्होंने इस्तेमाल की है तो इनको कैसा फायदा मिला है, तो मैं इनका नंबर, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं ये टांग वालों के लिए बता रहा हूँ भाई। इस भाई का नंबर है 0346-949-2454, ठीक है जनाब, 0346-949-2454। इन भाई से आप बिल्कुल जी हल्फन पता कर सकते हैं कि भाई आपने जो शो के अंदर ये बताया है कि वेट कम पेट कम ने आपको रिजल्ट दिया है, तो कैसा रिजल्ट मिला है, तो ये अपनी शहादत खुद आपको बताएंगे, ठीक है जनाब। इसके अलावा और कौन है हमारे साथ, सलाम भाई कैसे हैं आप, उम्मीद है आप ठीक होंगे। कल मैं शाम को गई आपकी शॉप पर, आपकी शॉप बंद थी भाई, आपसे पूछना था कि भाई फक्की कितनी मिकदार में खानी है, वजन बढ़ाने वाली फक्की कितनी मिकदार में खानी है भाई, और आपके पास ये कब आएगी फक्की हाजमा कंट्रोल सिरप। इंशाल्लाह जी, हाजमा कंट्रोल सिरप आपको कल या परसों से मिलना शुरू हो जाएगा।

0: एक के अंदर रिकवर होती है, तो फिर उसके बाद इसी महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको दो नई प्रोडक्ट हम आप लोगों को देने वाले हैं, ठीक है जनाब। अभी नहीं बताने वाला कि कौन सी है, लेकिन इंशाल्लाह इसी महीने के मैं मेरी बाई टांग में सख्त दर्द है, करीम नवाज डी ए खान, आपकी बाएं टांग में दर्द है तो आप शिफाय दर्द खरीदिए, ठीक है जनाब। जहां पर ज्यादा दर्द होता है या जहां से आपके मोहरे स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर जाके मालिश कीजिएगा इस तेल की, आप पहले दिन के अंदर ही फर्क महसूस करेंगे। तो 5-6 दिन मालिश करेंगे तो इंशाल्लाह भागेंगे, दौड़ेंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये भाई इनका ताल्लुक जो है डेरा इस्माइल खान से है, और इन्होंने कहा कि मेरी बाएं टांग के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है। तो जनाब केसन का जो शिफाय दर्द ऑयल है, बेसिकली ये शुतुरमुर्ग का तेल है, और शुतुरमुर्ग का तेल जो है ना वो इसके अंदर जो जड़ी बूटियां, ये जड़ी बूटियां बहुत सारे तेलों के अंदर होती हैं, विंटर ग्रीन, यूकलिप्टस वगैरह, ये कैप्सिकम हो गया, ये चीजें, लेकिन उनके अंदर शुतुरमुर्ग का तेल नहीं होता तो वो जिस्म के अंदर दर्द को खत्म नहीं कर पाती, यानी कि जिस्म के अंदर ऑयल दाखिल नहीं हो पाता। ये जो शुतुरमुर्ग का तेल होता है ये उन जड़ी बूटियों को आपके स्किन के अंदर जज्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपका दर्द का जड़ से खात्मा हो जाता है। तो भाई जरूर खरीदिए केसन शिफाय दर्द, करीबी जनरल स्टोर डेरा इस्माइल खान में, या फिर मियां कमर्शियल मार्केट के पीछे है अकबर प्लाजा, वहां पर है केसन शॉप, वहां पर आए और खरीदिए केसन का शिफाय दर्द। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा जनाब। कल तक के लिए इजाजत देंगे अल्लाह ने के बाद।
1: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

0: मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 तांकीन नशरिया, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।